0: We now offer you a recital from the Sikh holy book, the Guru Granth Sahib. One of the teachings of Sikhism is that there is only one God, as we hear from the following lines from the Guru Granth Sahib. There is only the one Supreme Lord God. There is no other at all. Soul and body all belong to Him. Whatever pleases His will comes to pass. Through the perfect Guru, one becomes perfect. O Nanak, meditate on the True One.
1: Eko Ankar Satnam Karta Purkh Nirpao Nirvair Akal Murtva Yunisa Pangur Prasad Slok Varate Vadhik Mahalla Paila Utangi Payohuri Gahiri Gambiri Sasar Suya Kevkari Nivanna Jaithani Gach Je Laga Gedwadi Sakhiye Taul Hari से पीटहंदे डिठ में मुंद ना गर्भ थणी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा कू जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहो मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलनहार नारक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वञाए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर सियों आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नारक दुनिया कैसी होई साल को मितना रहो कोई पाई बंदी है चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया है करके होए करे न गल्ला पिटन सर खोहे न नाव लैने